0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स

0: सनराइज हिट्स,
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथ स्टेशन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: Welcome to the jungle.
2: Film बिल्कुल फेक.
1: हमारी फिल्म आर्मी वाली.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
6: मैं किस लिए फिल्म में.
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए एडवरटाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777
0: दिस इज सनराइज हिट्स The UK's smoothest Asian hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits को सुनने के लिए शुक्रिया. UK के smoothest Asian hits. हमारे sister station Sunrise Retro को सुनना मत भूलिए. On DAB in London, on the Sunrise Radio app और sunriseradio.com पर. Sunrise Hits पर आज ही advertise कीजिए. UK के smoothest Asian hits. Sunrise Hits sales team को 0208574777 पर कॉल कीजिए.
0: Sunrise Hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits.
1: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: Sunrise Hits

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. दिस इज सनराइज हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Sunrise Hits.
1: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
3: The holiday playlist song of the hour with Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours का experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: Welcome to the jungle.
2: Film बिल्कुल फेक.
1: हमारी फिल्म आर्मी वाली.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
4: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
5: मैं किस लिए फिल्म में.
6: Advertise on Sunrise Hits today. The UK's smoothest Asian hits. Call the Sunrise Hits sales team today on 020-8574-7777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Back-to-back songs brought to you by Southall Travel. From India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Sunrise Hits.
1: Welcome to the jungle.
2: फिल्म बिल्कुल फेक.
1: हमारी फिल्म आर्मी वाली
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: Watch Welcome to the Jungle in cinemas now.
5: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में?
7: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए. UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel, from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: दिस इज सनराइज हिट्स, द यूके'स स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।
4: द हॉलिडे प्लेलिस्ट सॉन्ग ऑफ द आवर विद स्टार टूर्स। 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों हैप्पी ट्रैवलर्स, इसलिए फैमिलीज के लिए स्टार टूर्स का एक्सपीरियंस अलग होता है। विजिट स्टार टूर्स.co.uk।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: Sunrise Hits

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. दिस इज सनराइज हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: Advertise on Sunrise Hits today. The UK's smoothest Asian hits. Call the Sunrise Hits sales team today on 020-8574-7777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
4: The holiday playlist song of the hour with Star Tours. 28 साल का भरोसा. हर साल हजारों हैप्पी ट्रैवलर्स, इसलिए फैमिलीज के लिए स्टार टूर्स का एक्सपीरियंस अलग होता है. विजिट स्टार टूर्स.co.uk.

0: Pepe's Sizzling Song of the Hour. Fancy trying something new? Pepe's is launching for a limited time a rich harissa, sweet hot honey, and melted cheddar in focaccia. Harissa Honey Melt. Go on, try it. Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: Pepe's sizzling song of the hour. Download the Pepe's app for exclusive deals and tasty offers. Plus, enjoy easy ordering whether you're in store or relaxing at home.
1: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
3: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
2: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
4: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
1: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: Welcome to the jungle.
2: Film बिल्कुल fake.
1: हमारी film army वाली.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू. स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में.
7: Advertise on Sunrise Hits today. The UK's smoothest Asian hits. Call the Sunrise Hits sales team today on 020-8574-7777.
0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Back-to-back songs brought to you by Southall Travel. From India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: दिस इज द यूके'स स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। दिस इज सनराइज हिट्स। Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Sunrise Hits.
1: Welcome to the jungle.
2: फिल्म बिल्कुल फेक,
1: हमारी फिल्म आर्मी वाली,
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
1: स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
4: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में?
7: Advertise on Sunrise Hits today. The UK's smoothest Asian hits. Call the Sunrise Hits sales team today on 020-8574-7777.
0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
2: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
1: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Popper Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
2: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
1: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए एडवरटाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777
0: सनराइज हिट्स

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: Welcome to the jungle.
2: Film बिल्कुल फेक.
1: हमारी फिल्म आर्मी वाली.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: Watch Welcome to the Jungle in cinemas now.
5: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में.
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits.
1: Welcome to the jungle.
2: फिल्म बिल्कुल फेक,
1: हमारी फिल्म आर्मी वाली,
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
1: स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
4: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
6: मैं किस लिए फिल्म में?
7: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: सनराइज हिट्स.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777पर कॉल कीजिए
0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के smoothest Asian hits. Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए. Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के smoothest Asian hits. Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.